0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi पर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए शो, एक नई शाम में. मेरा नाम है नबील और शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टोरस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में सबसे पहले नजर होगी यूनाइटेड किंगडम की राजनीति पर, जहां प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी लीडर के पद से इस्तीफा दे दिया है. पार्टी के अंदर बढ़ते प्रेशर और गिरते पब्लिक सपोर्ट के बीच एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट माना जा रहा है. इसके बाद हमारी दूसरी रिपोर्ट होगी जिसमें हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चल रही टेंशन पर, जहां डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद और तनाव का माहौल बना हुआ है. फिर सुनेंगे क्वींसलैंड बेस्ड जैस्मिन बत्रा के अनुभवों का के बारे में, और उस पॉडकास्ट का दूसरा हिस्सा हम आपके लिए प्ले करेंगे. जैस्मिन बत्रा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिजनेस और स्टार्टअप कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने में काम कर रही हैं और दोनों देशों के बीच अपॉर्चुनिटीज को मजबूत भी बना रही हैं. और अंत में एक इंस्पायरिंग कहानी उत्तराखंड से, जहां जर्नलिस्ट सुमन मिश्रा ने अपने गांव में लाइब्रेरी विलेज की शुरुआत की है, जिसे हजारों किताबों और छोटे लाइब्रेरी स्पेसेस ने एक यूनिक नॉलेज हब बना दिया है. चलिए ये सारी रिपोर्ट्स एक एक करके लेकर आएंगे और जाहिर सी बात है कुछ गाने भी होंगे, लेकिन इस वक्त शुरुआत करते हैं न्यूज फ्लैश के साथ. मंगलवार 23 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने सिडनी एयरपोर्ट पर विमान में बम होने का दावा किया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. फेडरल पुलिस के अनुसार टर्किश एयरलाइंस की कुआलालंपुर जाने वाली फ्लाइट रविवार 21 जून को उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी, तभी एक क्रू मेंबर ने उस व्यक्ति से उसके हाथ में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में पूछताछ की. आरोप है कि उस यात्री ने कहा कि उसके पास बम है, लेकिन बाद में कैप्टन ने पुलिस को बताया कि वो सामान असल में एक वायरलेस फोन चार्जर जैसा लग रहा था. सुरक्षा के तौर पर आसपास बैठे यात्रियों को हटा दिया गया, जिसके बाद पुलिस विमान में पहुंची और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया. ग्रीन्स पार्टी ने सेनेट में लेबर सरकार के कानून का समर्थन करने पर सहमति जताने के बाद अब विवादित टैक्स रिफॉर्म्स कानून बनने की ओर हैं. ग्रीन्स ने सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके बदले में नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS में किए जा रहे अलग बदलावों पर जांच का समय बढ़ाया जाएगा. ग्रीन्स ने टैक्स पैकेज में भी कुछ संशोधन करवाए हैं. इसके अलावा सरकार एक ऐसे लूपहोल को भी खत्म करेगी जिसके जरिए लोग सेल्फ मैनेज सुपर फंड्स के माध्यम से संपत्ति खरीद कर कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव से बचते थे. काउंसलिंग लेने से पहले ही कई युवा गंभीर मानसिक संकट की स्थिति में पहुंच रहे हैं. ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. किड्स हेल्पलाइन की नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में क्राइसिस इंटरवेंशन यानी आपात सहायता के मामले 3 गुना से अधिक बढ़ गए हैं. 2025 में इस सेवा ने 5,100 से अधिक क्राइसिस मामलों में मदद की, जो 2018 की तुलना में लगभग 350% की बढ़ोतरी है. रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि फर्स्ट नेशंस युवा कुल कॉल्स का 9% थे, जो उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी से दुगने से भी अधिक है. 10 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी में फेडरल सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें सरकार पर फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स को समर्थन देने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फेडरल सरकार नए कोल और गैस प्रोजेक्ट्स

0: को मंजूरी और सब्सिडी देकर मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। उनका तर्क है कि ये नीति जीवन, परिवार और घर के अधिकारों के साथ साथ फर्स्ट नेशन समुदायों के सांस्कृतिक अधिकारों को भी खतरे में डालती है। ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट करने वाले देश अपने निर्यात से होने वाले जलवायु नुकसान के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स ने कहा है कि एल्बनीजी सरकार का फोकस अब डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर है और इसके तहत देश के इतिहास में दो सबसे बड़े डिफेंस डील्स हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा के साथ अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट डील साइन किया है। इसके तहत कनाडा की सरकार लगभग $2.5 बिलियन खर्च करके ओवर द होराइजन रडार खरीद रही है, जिसे 1980 के दशक के अंत में विकसित किया गया था और इसे दुनिया के सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज रडार में से एक माना जाता है। रिचर्ड माल्स ने चैनल 9 के टुडे शो को बताया कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच इस डील को लेकर बातचीत काफी समय से चल रही थी। और अब खबर भारत से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के विदेश मंत्री वैंग यी के बीच बातचीत हुई, जिसे विदेश मंत्रालय ने कंस्ट्रक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग बताया है। दोनों पक्षों ने भारत और चाइना के संबंधों में हालिया प्रगति को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुए सुधारों पर सहमति जताई। ये बातचीत 2020 के सीमा तनाव के बाद रिश्तों में आए उतार चढ़ाव के बीच 2024 से शुरू हुए प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और न्यूज फ्लैश के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज के शो की पहली रिपोर्ट की तरफ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव और घटते जन समर्थन के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने कहा कि उन्होंने किंग चार्ल्स 3 को अपने इस्तीफे की जानकारी दे दी है और सत्ता के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बदलाव के लिए वो अब काम करेंगे। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी नताशा की ये रिपोर्ट।
1: ब्रिटेन एक बार फिर अपने नए प्रधानमंत्री के चयन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। यह फैसला उनकी पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव और जनता के बीच लगातार घटते समर्थन के कई महीनों बाद आया है और अब लेबर पार्टी खुद को राजनीतिक रूप से पुनर्गठित करने की कोशिश कर रही है। कीर स्टार्मर ने जुलाई 2024 में लेबर पार्टी को दशकों की सबसे बड़ी चुनावी जीतों में से एक दिलाकर सत्ता संभाली थी। 14 वर्षों तक चली कंजर्वेटिव सरकार के बाद लेबर ने राजनीतिक स्थिरता बहाल करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जनता का भरोसा फिर से जीतने का वादा किया था। हालांकि सरकार का शुरुआती उत्साह जल्द ही फीका पड़ने लगा। स्टार्मर के नेतृत्व में घरेलू नीतियों पर बार बार यू टर्न, महंगाई को लेकर बढ़ती सार्वजनिक नाराजगी और संसद में भारी बहुमत होने के बावजूद ठोस बदलाव लाने में विफल रहने की आलोचना ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। कई मंत्रियों के इस्तीफों और पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि सरकार स्पष्ट दिशा के अभाव से जूझ रही है। संसद के बाहर लेबर पार्टी पर दबाव बढ़ता गया। अप्रवासन विरोधी रुख के कारण रिफॉर्म यूके पार्टी को बढ़ता समर्थन मिला, जिसने देश की राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी। मई में हुए स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लेबर पार्टी के भीतर ये सवाल खुलकर उठने लगा कि क्या स्टार्मर 2029 के आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सही विकल्प हैं। हालांकि स्टार्मर सार्वजनिक रूप से अपने पद पर बने रहने की बात करते रहे, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने निजी तौर पर उनसे पद छोड़ने का आग्रह किया था, ताकि लेबर पार्टी को और समर्थन खोने से पहले खुद को फिर से संगठित करने का अवसर

0: मिल सके।
1: अपने इस्तीफे के संबोधन में स्टामा ने स्वीकार किया कि उनके सहयोगियों का मानना था कि पार्टी के लिए नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक हो गया है।
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Starmer ने कहा कि वे तब तक डाउनिंग स्ट्रीट में बने रहेंगे जब तक लेबर पार्टी उनके उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लेती।
2: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
1: University of Leeds की पॉलिटिक्स प्रोफेसर विक्टोरिया हनीमन का कहना है कि स्टामा के पद छोड़ने का फैसला उनकी घटती जन समर्थन दरों का परिणाम है।
3: I don't think it's that surprising. I think that the writing has been on the wall, certainly since the Makerfield by-election result, but even before then, Keir Starmer's future has been looking very uncertain for quite some considerable time. So I don't think that there's any particular surprise about that. I think that Keir Starmer has probably handled this about as well as he could.
1: Starmer के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री को लेकर चर्चाएं अब तेज हो रही हैं। इस बीच ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहम ने लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए अपनी दावेदारी की पुष्टि कर दी है।
4: It is our last chance to change, but we're going to take it, aren't we? We are going to take that opportunity and we are going to lay out a new path for Britain.
1: उन्हें इस दौड़ का शुरुआती और मजबूत दावेदार माना जा रहा है। स्टामा के इस्तीफे के साथ ही वे पिछले एक दशक में पद छोड़ने वाले ब्रिटेन के छठे प्रधानमंत्री बन गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम अवधि में प्रधानमंत्रियों का बार बार बदलना ब्रिटिश राजनीति में एक असाधारण स्थिति को दर्शाता है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि लेबर पार्टी की चुनौती केवल स्टामा की घटती लोकप्रियता तक सीमित नहीं है। ब्रिटिश पोलस्टर यानी चुनाव विशेषज्ञ जॉन कर्टिस के अनुसार पार्टी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा नाइजल फराज की अप्रवासन विरोधी राजनीति का प्रभावी जवाब ढूंढना है। उनका कहना है कि फराज की पार्टी लगातार उन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है जो मुख्य धारा की पार्टियों से निराश है, और यही लेबर के लिए आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है।
5: Mr. Burnham has provided as much evidence as any Labour MP could expect from a by-election as to his potential ability to be able to take the challenge to reform and to fight an electoral strategy and frame an appeal that enables Labour to be competitive with reform. And that, above all, is what many a Labour MP is seeking.
1: ये राजनीतिक उथल-पुथल के नतीजों को संभालने का मामला भी हो सकता है। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पॉलिटिक्स प्रोफेसर टिम बेल का कहना था कि स्टामा इस्तीफा देना नहीं चाहते होंगे, लेकिन अंततः उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा।
6: ऑफ कोर्स नो प्राइम मिनिस्टर रियली वांट्स टू लीव एट अ टाइम दैट्स नॉट ऑफ देयर ओन चूजिंग, बट वी हैव सीन यू नो फॉर डेकेड्स रियली ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स दैट पीपल रेयरली गेट दैट अपॉर्चुनिटी। वांट्स योर पार्टी एंड पर्टिकुलरली योर कैबिनेट डिसाइड्स दैट योर टाइम इज अप, देन यू आर बेस्ट ऑफ गोइंग क्वाइटली।
1: फिलहाल ब्रिटेन को बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है, और जीवन यापन की बढ़ती लागत को कम करने की बात कहने के अलावा एंडी बर्नहम ने अभी तक विदेश नीति, इकोनॉमी या डिफेंस के प्रति अपना स्पष्ट दृष्टिकोण सामने नहीं रखा है। स्टामर की तरह उन्हें भी ये महसूस हो सकता है कि उनके पास नीतिगत स्तर पर बहुत कम गुंजाइश है। इस घोषणा के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए स्टामर के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं कियर स्टामर को अपना मित्र मानता हूँ और इस बेहद कठिन दिन में मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। सार्वजनिक जीवन में सेवा करना एक बड़ा सम्मान है, लेकिन राजनीति कभी कभी बहुत कठोर भी।

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas. Para que nada te detenga, trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
3: SBS Audio.
4: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
5: यही चाहता दिया. चुनता हाल में.
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics.
11: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
12: sbs.com.au/audio.
13: एयर ब्रेक के बाद हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील. अब बढ़ेंगे शो के अगली रिपोर्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले आज शो का जो सवाल है वो पूछ लेते हैं. अभी ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हर जगह ये फीफा का क्रेज चढ़ा हुआ है और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, खेल एक ऐसी चीज है जो हम सबको यूनाइट करता है. और कई लोगों को फीफा के बारे में शायद इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जब ये सीजन शुरू होता है तो हम सब उसे देखने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं. तो आज थोड़ा पीछे चलते हैं नॉस्टैल्जिया में और आपसे पूछते हैं कि बचपन में आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट था. वो इंडोर हो सकता है, आउटडोर हो सकता है और कुछ भी अलग हो सकता है. तो 04397997667 पर मैसेज करके अपना फेवरेट स्पोर्ट बताइए जो आपने बचपन में बहुत खेला है या शायद स्कूल टाइम पे भी, और अपना नाम जरूर लिखिएगा. और मैं अगर अपना जवाब पहले दूं तो जाहिर सी बात है क्रिकेट तो इंडिया में हर तरफ फेमस ही है, लेकिन कैरम बोर्ड का मुझे बहुत शौक था और आज भी है. आज भी दोस्त ढूंढे जाते हैं कि अगर दोस्त मिल जाएं तो कैरम बोर्ड की महफिल सजाई जाए. तो 04397997667 आप अपना फेवरेट इंडोर या आउटडोर स्पोर्ट या गेम जो भी खेलते थे या जो आपको पसंद है जरूर हमें लिखकर बताइए और हम सबके साथ शेयर करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं जब तक आपके जवाब आते हैं अपनी दूसरी रिपोर्ट की तरफ. ये रिपोर्ट है ईरान और अमेरिका से जुड़ी. दोनों देशों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात को लेकर मतभेद और तनाव बढ़ गया है. स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के पहले दौर के बाद भी माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है और रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी बयान के बाद ईरानी प्रतिनिधि बैठक से बाहर चले गए. क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं भव्या पांडे की इस रिपोर्ट में.
14: दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच इस बात को लेकर विरोधाभासी दावे सामने आ रहे हैं कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्री यातायात के लिए खुला है या नहीं. स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच वार्ता का पहला दौर समाप्त हो गया है. रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भरी टिप्पणियों के विरोध में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत बीच में ही छोड़ दी. आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, लेकिन सोमवार सुबह तक इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नौवहन के लिए खुला है या नहीं. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेल ने सप्ताहांत में घोषणा की कि ये मार्ग बंद कर दिया गया है. उन्होंने ईरानी सरकारी मीडिया से कहा है कि ये निर्णय लेबनान में जारी हिंसा के कारण लिया गया है.
15: The commitments are very clear. An end to the war on all fronts, including in Lebanon. We have honored our commitments. They have failed. This constitutes a clear violation of the ceasefire memorandum.
14: आपको बता दूं कि ये घोषणा उस समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के वार्ताकार

0: पहली बैठक के लिए मिलने वाले थे। इन वार्ताओं का उद्देश्य इस वर्ष तेहरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करना है। उसके बाद व्हाइट हाउस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की आशंकाओं को खारिज किया। अमरीकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि शनिवार को 68 जहाज इस मार्ग से गुजरे, जबकि उससे एक दिन पहले 55 जहाज गुजरे थे। उनके अनुसार तेल और ईंधन की आवाजाही लगभग संघर्ष पूर्व स्तर पर लौट आई है।
1: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now that's because of a U.S. military presence. Iranians still have not demined the central shipping channel, but the U.S. opened a separate channel down south, and we've been escorting ships through that for several weeks now.
0: हालांकि व्यावसायिक शिपिंग डेटा इस बयान से मेल नहीं खाता है। ईरान की घोषणा के बाद केवल एक टैंकर ने अपने ट्रांसपॉन्डर चालू रखकर जलमार्ग पार किया, जबकि पिछले दिनों दर्जनों जहाज गुजर रहे थे। ऐसे में ईरानी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से बताया कि रविवार तक नए जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। ऐसे में ईरानी वार्ताकार हुसैन घोरबंदाज़ेह ने कहा है कि लेबनान का मुद्दा बातचीत में सबसे प्रमुख रहा।
2: The issue of Lebanon received more emphasis than anything else. Naturally, if with regard to Lebanon, which is one of the principal fronts where the end of the war must be declared, this does not happen, then the subsequent issues will certainly not be negotiated.
0: लेबनान के सरकारी मीडिया के अनुसार शनिवार को दक्षिणी लेबनान में इसराइली हमलों में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। नेम कासिन ने लेबनानी सरकार से ईरान के साथ अपने संबंध सुधारने का आह्वान किया है।
3: أدعو السلطة اللبنانية أن تستفيد.
4: Go and fix out your situation with Iran, your political authority. Fix your relationship with Iran. Even the United States is fixing its situation with Iran. All Arab countries are adjusting their relations with Iran. What are you? What kind of people are you? You are still standing aside behind the rest. Why? Sort it out. Catch up at the right time because this is a source of strength for you. No one will take anything away from your path.
0: लेबनान के स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार मार्च से अब तक लगभग 4,000 लोग मारे जा चुके हैं और 12 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि समझौते का उल्लंघन हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वॉशिंगटन पर होगी, जबकि इसराइल का कहना है कि वे इस समझौते का पक्षकार नहीं है। ऐसे में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र से इसराइली सेना नहीं हटेगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि इसराइल ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा।
5: No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the prime minister of Israel, I will not let that happen.
0: ल्यूसर्न में हुई ये वार्ता निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो गई। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के करीबी सूत्रों ने तासनिम न्यूज एजेंसी को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों के विरोध में ईरानी प्रतिनिधि बैठक से बाहर चले गए। बाद में रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने ये भी कहा कि यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करता है तो यू वोंट हैव अ कंट्री, यानी ईरान बचेगा ही नहीं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बघेर घालिबाफ ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब देते हुए लिखा,
6: वी डू नॉट टेक दिस स्टेटमेंट सीरियसली बट इट वुड नेवरदलेस बी एडवाइजेबल फॉर देम टू शो मोर रिस्ट्रेंट।
0: ऐसे में अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि यदि ईरान परमाणु हथियार की महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देना छोड़ देता है तो अमरीका उसके साथ संबंधों में नई शुरुआत करना चाहेगा।
7: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
0: अंततः दोनों पक्ष तकनीकी स्तर की वार्ताओं को आगे जारी

0: जारी रखने पर सहमत हुए हैं। SBS न्यूज के लिए कैमिली बियांचा की इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे।
1: आपने अभी अभी सुनी भव्या पांडे की रिपोर्ट SBS हिंदी पर US और ईरान को लेकर। अगर आप हमारे कोई भी ऑडियो कार्यक्रम फिर से सुनना चाहते हैं तो आपको ये सारे पॉडकास्ट हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे sbs.com.au/hindi। तो जरूर वेबसाइट विजिट करें और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम को भी लाइक करें, SBS HINDI के नाम से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एड ब्रेक से पहले आज के शो का सवाल दोहरा देते हैं और एक मैसेज भी आ गया है। आज हम ये पूछ रहे थे कि फीफा का हर जगह एक क्रेज हुआ है, खेल एक ऐसी चीज है जो हर किसी को यूनाइट करता है, और आपका वो कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है या फेवरेट गेम है, और शायद आपको बचपन में बहुत पसंद हो या आपने स्कूल टाइम पे बहुत खेला हो। तो 04397997667 पर शेयर करिए। और जैसे मैंने बताया कि मुझे कैरम बोर्ड बड़ा पसंद था और आज भी है, वैसे एक मैसेज आया है हर्षवर्धन शर्मा जी का कैनबरा से। वो लिखते हैं कि माई फेवरेट स्पोर्ट इज सॉकर एंड क्रिकेट, और क्रिकेट तो आई एम श्योर और कई लोगों का होगा बस, बट उसके अलावा भी कई छोटे मोटे और बड़े खेल होते हैं जो आप इंडोर आउटडोर खेलते हैं। तो 04397997667 पर मैसेज करिए आपका फेवरेट स्पोर्ट और हम आपका मैसेज जरूर ऑन एयर पढ़ेंगे। चलिए एक एड ब्रेक लेते हैं, एड ब्रेक से वापस आकर गाने का वक्त हो चुका है, गाना प्ले करेंगे और फिर कुछ रिपोर्ट्स। बने रहिए SBS हिंदी पर, मैं हूँ नबील।
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
4: Yay!
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Ready to order?
7: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
6: Everything?
8: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
9: Yes, Chef!
7: This is so nice.
8: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
7: Ooh, tiramisu!
8: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
11: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
1: SBS हिंदी पर वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय हो गया है एक गाने का, चलिए मूवी का ये गाना प्ले करते हैं और उसके बाद मिलेंगे और आपको एक रिपोर्ट सुनाएंगे। अब गानों का सिलसिला जारी रहेगा रिपोर्ट्स के बीच में, तो एंजॉय करिए गाना। मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। मेरा नाम है नबील, सुनते रहिए SBS हिंदी।

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: कोई एग्जाम्पल देके हमें बताएं कि ऑस्ट्रेलिया रेगुलेशंस कंप्लायंस में काफी पर्टिकुलर है. ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री थोड़ा रिस्क एवर्स भी है. हम लोग हर चीज के बॉक्सेस टिक होना जरूरी है, सारी कंप्लायंस होना जरूरी है. हम लोग डे टू डे ही देखते हैं कि आप यहाँ पर किसी को अपने वर्क कुली को उसको सर दर्द हो रहा है, आप उसको सीधे पैनाडॉल नहीं दे सकते क्योंकि वो तो लॉ के अगेंस्ट है. इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आप नेचुरली कर सकते हैं. तो उस डिफरेंस से ऑस्ट्रेलिया में कुछ नया लाने के लिए बहुत कंप्लायंस जरूरी होता है. स्टेट लॉ, फेडरल लॉ, वर्क सेफ्टी, हेल्थ सेफ, OHNS, बहुत हमारे कानून हैं. इंडिया में इनोवेशन की हंगर है और वहाँ पर अगर कुछ चीज किसी डिपार्टमेंट को सही लगी तो वो आगे बढ़ जाती है. एक एग्जांपल जो मैं आपको दूंगी, इंडिया में गवर्नमेंट एज अ फर्स्ट कस्टमर पॉलिसी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी कि अगर आपने कुछ बनाया है और वो आपको लगता है कि इससे स्टेट का भला होगा और हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, तो वो कहती है कि हम सबसे पहले गवर्नमेंट आपका कस्टमर बनते हैं और एक बार आपने गवर्नमेंट को अपनी चीज भेज दी तो आपको लिए बाकी ग्राहक लाना आसान हो जाता है. हमने अपने जब हम ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को साथ लेके गए, हमने खुद देखा कि गवर्नमेंट बहुत आगे है नई चीजें ट्राई करने के लिए और वो एक बहुत बड़ा चेंज है जो इंडिया में पिछले 8-10 सालों में आया है.
2: आपको क्या लगता है अगर हम ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापार समझौता जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो हो जाएगा, उससे इन बातों में और ज्यादा फर्क आने की उम्मीद है?
1: जी, अभी जो हमने फर्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहा है उससे भी काफी चीजें आगे बढ़ने शुरू हुई है कुछ सेक्टर्स में, क्लाइमेट, सिक्योरिटी और रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीजों में. जब वो कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा और एक नए लेवल पर उसका जो होगा निर्माण, उससे आपस में बिजनेस करना आसान होगा. और यही सबके लिए मैसेज है कि आप इंडियन आप समझते हैं, आप दोनों कंट्रीज को अगर आप समझते हैं तो आप अपने बिजनेस में, चाहे आप फ्रूट या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखें कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है और आप वो दूसरी कंट्री तक पहुंचाने के लिए आप उस व्यापार में सहयोग कर सकते हैं.
2: जैस्मिन, दोनों देशों के जो निवेशक हैं या जो बिजनेस सेंस है या बिजनेस कल्चर कह लीजिए, वो बहुत ही अलग है. ऑस्ट्रेलिया जितना डायरेक्ट है उतना ही भारत में पर्सनल रिलेशन या वर्ड ऑफ माउथ या लॉन्ग टर्म रिलेशंस पे बिजनेस कल्चर एक चलता है. तो किस प्रकार दोनों देश एक दूसरे से सीख सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी ट्रांजैक्शन बेस्ड करते हैं कि अच्छा हमें आपसे डील करनी है, आप ये सारे क्राइटेरिया मिलते हैं तो हम कर सकते हैं. इंडिया में हम सबसे पहले इंसान की परख करते हैं, उसके बाद जो उन्होंने बिजनेस डील रखी है उसको बाद में देखते हैं.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: पर आके अपना बिजनेस शुरू करा. मैं और माइग्रेंट एंटरप्रेन्योर से बात करना चाहती थी और इस प्रोग्राम को भी मैंने जब डिजाइन करा, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को इसमें ज्वाइन करा हुआ. मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ऑस्ट्रेलिया की रिचनेस है कि हमारे पास लोग रोमानिया, यूक्रेन, पोलैंड, हर जगह से आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से. तो जो आपका क्वेश्चन है कि वो अलग अलग उसका क्या एडवांटेज है,

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: SBS हिंदी पे हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज के शो में हम आपसे पूछ रहे थे कि आपका फेवरेट इंडोर या आउटडोर गेम कौन सा है, खास तौर पे जो आपने बचपन में खेला हो और आपको आज तक याद है. एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज आया है. चेतन शार सिडनी से लिखते हैं कि हाय नबील, आई एंजॉयड प्लेइंग द लोकल गेम ऑन वीकडेज द किंग विद बॉयज. इट वॉज अ वेरी पॉपुलर गेम साउथ मुंबई में. ये कोई एक मशहूर गेम था और क्रिकेट वॉज डेफिनेटली अ वीकेंड गेम एट लोकल स्टेडियम अक्रॉस द मेरीन ड्राइव. एंजॉयड द कॉम्पिटिशन. तो जहां क्रिकेट तो हर कोई खेलता ही था, लेकिन चेतन जी लिखते हैं कि द किंग नाम का एक बड़ा ही मजेदार गेम था. और मैं अगर डिक्लेयर करूं तो मुझे इस गेम के बारे में नहीं पता, तो आज मैं इसको जरूर सर्च करके देखूंगा कि ये क्या खेलता. आप भी बताइए 04397997667 पर कि आपका फेवरेट इंडोर या आउटडोर गेम कौन सा था जो आपको बड़ा पसंद था या आज भी पसंद है. और हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं जिसमें कैरम बोर्ड और किसी किंग और क्रिकेट और सॉकर सब हमारे साथ शेयर किया है. 04397997667 हमारा नंबर है. आपके मैसेजेस का इंतजार है और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा. तब तक ये एंजॉय करिए ये अगला गाना. मैं आपसे मिलता हूं थोड़ी सी देर में.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
4: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब शो के आखिरी रिपोर्ट का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस आए हैं वो पढ़ देते हैं। जफर लिखते हैं कि वेरी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जफर जी, एंड माय फेवरेट स्पोर्ट वाज टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन। और हेमलता पुरोहित जी लिखते हैं कि वो जब स्कूल में थी तो उनको लंगड़ी गेम बहुत पसंद था। आई थिंक लंगड़ी लिखा है क्योंकि उनकी स्पेलिंग LAGDI है, बट आई थिंक लंगड़ी लिखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ने आज अपने मैसेजेस 0439 7996 7 पर। हमें इंतजार है आपके मैसेजेस का कि आपका फेवरेट इंडोर या आउटडोर स्पोर्ट, शायद आपने बचपन में खेला हो स्कूल में, या ऑस्ट्रेलिया आके एक नई हॉबी स्टार्ट कर दी हो। जरूर हमारे साथ शेयर करिए और अपना नाम भी जरूर लिखिए। चलिए एक आखिरी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, और फैसल फरीद की ये रिपोर्ट है। दिल्ली के पत्रकार और लेखक सुमन मिश्रा ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक गांव में अपनी पत्नी के साथ मिलकर लाइब्रेरी विलेज की स्थापना की है, जहां 20,000 से अधिक किताबों और 8 छोटे पुस्तक मंदिर मौजूद हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं इस रिपोर्ट में।
5: दिल्ली के पत्रकार लेखक सुमन मिश्रा ने उत्तराखंड में एक लाइब्रेरी विलेज की स्थापना की है। ये रुद्रप्रयाग में मणिगुह नाम का एक गांव है, जहां पर सुमन वापस अपनी पत्नी के साथ आए और इस गांव में लाइब्रेरी की स्थापना की। आज 20,000 से भी अधिक किताबों के साथ और 8 छोटे छोटे पुस्तक मंदिर को समेटे हुए ये गांव लाइब्रेरी विलेज के नाम से जाना जाता है। आप यहां पर हर विषय और विभिन्न भाषाओं की किताबें पढ़ सकते हैं। यही नहीं, ट्रैकिंग करने जाने पर आपको रास्ते में पुस्तक मंदिर मिलेंगे, जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं और पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर किताबों ने इस गांव की एक नई पहचान बना दी है। कैसे बना ये लाइब्रेरी विलेज, सुमन बताते हैं।
6: नमस्कार, मेरा नाम सुमन मिश्रा है और मैं दिल्ली की एक संस्था है रेखता फाउंडेशन। रेखता फाउंडेशन में

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: हमने decide किया कि चूंकि पढ़ने पढ़ाने का ही काम था तो हमने decide किया कि मिलकर एक पुस्तकालय शुरू करते हैं. फिर हमने जब पुस्तकालयों पे जब हमने research करना शुरू किया तो पता लगा कि पुस्तकालय तो बहुत सारे हैं और बच्चे वहां आते नहीं हैं. तो फिर हमने एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया. हमने सोचा कि क्यों ना पुस्तकालय को लोगों के व्यक्तित्व का हिस्सा बना दें, क्योंकि जब कोई चीज किसी के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है तब उसे उसे बचाने के लिए लोग प्रयासरत होते हैं. उदाहरणार्थ जैसे मेरा नाम सुमन मिश्रा है, लेकिन अगर कोई मिश्रा को गाली देता है तो मुझे लगेगा कि मुझे गाली देता है, हालांकि वो मैं नहीं, वो मेरा नाम है. लेकिन मैं उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा उसकी. तो उसी तरह से हमने ये शुरू किया और हमने इसको पुस्तकालय गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया. हमने इसको इसमें हमने फिर पुस्तकालय गांव, लेकिन ये होगा कैसे, तो फिर हमने इसमें डिसाइड किया कि इसमें हम पुस्तक मंदिर बनाएंगे. और चूंकि तो एक गांव चुना गया, ये गांव जो है ये हमारी पत्नी का जो है वो ननिहाल है. इस गाँव का नाम है मणिगोह और ये गांव एक ग्राम सभा है और जिसके आसपास बहुत सारे 8-10 क्लस्टर ऑफ विलेजेस हैं, जो छोटे छोटे छोटी छोटी आबादियां हैं जो अलग अलग 1-1.5 किलोमीटर दूर पे बसी हुई हैं. तो एक चुनौती ये थी कि उन सबको लाइब्रेरी में कैसा लाया जाए. तो हमने ये सोचा कि क्यों ना लाइब्रेरी को उन तक पहुंचाया जाए. तो फिर हमने निश्चय किया कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी होगी और बहुत सारे पुस्तक मंदिर होंगे छोटे छोटे, जिसमें किताबें होंगी और वो रीडिंग स्पॉट की तरह उनको हम उपयोग में लाएंगे. और इस तरह से पुस्तकालय गांव की शुरुआत हुई. हमने पहले एक फाउंडेशन रजिस्टर किया, सेक्शन 8 कंपनी है, 2023 में रजिस्टर हुई. और सेक्शन 8 कंपनी में हमारे साथ दो और मित्र आए, एक राहुल रावत हैं जो पूरा हमारे फाउंडेशन की पूरी अकाउंटिंग और बाकी चीजें देखते हैं, और एक आलोक सोनी है. आलोक सोनी हरियाणा से हैं और जाने माने फोटोग्राफर हैं. वो पहले हिंदुस्तान टाइम्स में सीनियर फोटोग्राफर थे, उसके पहले फॉर्च्यून में थे और अभी फ्रीलांस वो फोर्ब्स वगैरह के साथ काम करते हैं. तो इस तरह से हमने एक फाउंडेशन बनाया और लाइब्रेरी की शुरुआत हुई. लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी गाँव का जो विधिवत उद्घाटन 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन हुआ था और इसका उद्घाटन उत्तराखंड के जाने माने पत्रकार रमेश पहाड़ी जी, जो उत्तराखंड जन आंदोलन से भी जुड़े रहे, तो उन्होंने ये उद्घाटन किया था. हमने शुरुआत 4000 किताबों से की थी और वो धीरे धीरे बढ़कर अब 20,000 किताबों तक पहुंच गई है. अभी फिल वक्त जो है लाइब्रेरी में 20,000 किताबें हैं और 4 और 8 पुस्तक मंदिर हैं. इसके अलावा पुस्तकालय में जो है हमने प्रोजेक्टर की व्यवस्था की है ताकि जो है वर्ल्ड सिनेमा को बच्चों को दिखाया जा सके, और जो टेलीस्कोप वगैरह है लाइब्रेरी में खेलने के सामान है, कंप्यूटर्स की व्यवस्था है. अभी 4 कंप्यूटर्स वहां पर हैं जिससे बच्चे जो है वहां के निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा ले रहे हैं.
6: अब लाइब्रेरी तो आजकल हर गांव में खुल रही है, अधिकांश प्रतियोगिता से संबंधित सामग्री रखते हैं, लेकिन सुमन जी की लाइब्रेरी में हर तरह की पुस्तकें मिल जाएंगी. जानी मानी लेखकों का व्यक्तिगत संग्रह, महाभारत के पूरे खंड, कई दुर्लभ पुस्तकें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, गढ़वाली, कुमाऊनी और यहाँ तक फारसी समेत कई भाषाओं में आपको पुस्तकें मिल जाएंगी.
5: ये इसमें हर तरह की किताबें हों. तो हमने फिर बहुत सारे ऑथर्स से, राइटर्स से संपर्क किया और कई बड़े लेखकों का निजी संग्रह जो पूरे देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है वो पुस्तकालय गाँव में आपको मिलेगा. इसके साथ ही जैसे शशि भूषण द्विवेदी जो कादम्बिनी में थे, उनकी मृत्यु के बाद, दुखद मृत्यु हुई उनकी कोरोना में, उनके बाद उनका पूरा कलेक्शन जो है वो लाइब्रेरी विलेज में है. एक प्रसिद्ध पत्रिका है अभी भी निकलती है, सलानीरा, जिसके प्रधान संपादक आग्नेय जी थे. आग्नेय जी का पूरा कलेक्शन हमारे यहाँ है. ललित मोहन थपलियाल जी, उत्तराखंड के प्रसिद्ध राइटर,

0: पूरा कलेक्शन हमारे यहाँ है, निजी कलेक्शन। इसके साथ ही जो है हम हमारे पास नवल किशोर प्रेस, जो लखनऊ की बड़ी प्रसिद्ध प्रेस थी, 1890 के आसपास की किताबें जो उन्होंने छापी हैं, वो किताबें, दुर्लभ किताबें हमारे पास हैं। हमारे यहाँ उर्दू, फारसी, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, राजस्थानी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी किताबें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की जो बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, इनमें भी बहुत सारा साहित्य हमारे यहाँ उपलब्ध है। और एक अलग सेक्शन ही सिर्फ उत्तराखंड साहित्य पे हमारा है। उसके साथ ही हमने अलग अलग सेक्शंस में किताबों को बांटा है, जिसमें कविताएं हैं, कहानियां हैं, नॉवेल्स हैं, और राजनीति शास्त्र है, लॉ और प्रतियोगिता की किताबें और इंजीनियरिंग की किताबें। इसके साथ ही जो है पर्यावरण पर किताबें और बायोग्राफीज, ऐसे करके बहुत सारे सेक्शंस में हमने किताबों को बांटा है। हमारा उद्देश्य ये शुरू से रहा है कि लाइब्रेरी रोज खुले, तो हमने उसके लिए एक डेडिकेटेड उसकी व्यवस्था, लाइब्रेरियन की व्यवस्था की है, ताकि वो लाइब्रेरी रोज खुलती है और पुस्तक मंदिरों से जो है किताबों का आदान प्रदान चलता रहता है।
1: सुमन का कॉन्सेप्ट यही था कि लाइब्रेरी तक गांव वालों को नहीं बल्कि गांव वालों तक लाइब्रेरी को पहुंचाया जाए। कुछ ऐसा ही उन्होंने कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल पर इस लाइब्रेरी विलेज को विकसित किया है।
0: देखिए, पलायन जो है वो इस क्षेत्र में कम है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो केदार घाटी में है, और केदार घाटी में यात्रा की वजह से यहाँ थोड़े बहुत रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। जब यात्रा शुरू होती है तो लोग अपना घोड़ा खच्चर लेके केदारनाथ चले जाते हैं, और वहाँ पर थोड़ा बहुत रोजगार हो जाता है। तो पलायन उतना नहीं है, पलायन कम है इस क्षेत्र में। लेकिन गांव वालों पर हमारा यह असर पड़ा कि जहाँ बच्चे बच्चों को किताबें मैसर नहीं थी, एक किताब देखने नहीं मिलती थी, वहाँ अब वो इतनी सारी किताबों के बीच अभी हैं। तो धीरे धीरे धीरे धीरे जो पुस्तक पुस्तक संस्कृति और पठन पाठन की संस्कृति है वो डेवलप हो रही है। उसके अलावा जो हमने चूंकि इसको सिर्फ एजुकेशन तक नहीं रखा था, क्योंकि हमें हमारा विश्वास था कि एजुकेशन जब तक शिक्षा को स्वरोजगार से ना जोड़ा जाए, तब तक ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं होती। क्योंकि अगर स्वरोजगार डेवलप हो गया और शिक्षा नहीं है, तो विकास बड़े गलत अर्थों में गाँव में आता है। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है अगर आपको विकास चाहिए तो, क्योंकि आपको ये पता होता है कि विकास सच्चे अर्थों में किस तरह से गाँव में आए। तो इसलिए हमने ये दोनों चीजों को एक साथ उठाया। अब उसमें हमने जो है गाँव में, चूंकि उसके आसपास एक बड़ा फेमस ट्रैक है कार्तिक स्वामी का, जो नॉर्थ इंडिया में पहला कार्तिक स्वामी का मंदिर है, तो उसका एक वैकल्पिक मार्ग जो है वो लाइब्रेरी विलेज से होकर जाता है। तो हमने उस मार्ग को ज्ञान मार्ग की तरह विकसित करने का हमने कोशिश की उसको, और धीरे धीरे उस तरफ लोग भी आ रहे हैं। तो उससे ये फायदा हुआ कि गांव के लोगों की होम स्टेज, गांव के जो खाली घर थे उन घरों में होम स्टेज लोगों ने रखने शुरू किए, और अभी गांव में एक साथ 30 से ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था है। तो ये लोग जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ यहाँ पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर जंगल वॉक, और बहुत ही रिच बायोडायवर्सिटी है इस क्षेत्र में। यहाँ पर आपको बहुत सारे दुर्लभ पक्षी और दुर्लभ प्रजातियों के वृक्ष, वनस्पतियाँ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और तो इस तरह से धीरे धीरे ये क्षेत्र जो है एडू टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के रूप में ये क्षेत्र धीरे धीरे डेवलप कर रहा है।
1: सच है, किताबें हालात बदलती हैं। सुमन जी ने एक गांव को लाइब्रेरी विलेज के रूप में विकसित करके ये दिखा दिया कि ऐसा भी संभव है। लखनऊ से फैसल फरी।
2: SBS हिंदी पर आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूँ, बस कुछ ही मिनट रह गए शो के अंत होने में, और आपसे मैं मिलूंगा बहुत जल्द SBS हिंदी पे। मेरा नाम है नबील, एंजॉय करिए अपनी शाम को, खूबसूरत बनाइए।

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! लेंगे और इसको हम दोबारा नए सिरे से जो चेंजेस हैं वो की जाएंगी. इसलिए इससे पहले कि मैं उनको मशीजा फातिमा साहिबा ने क्या और बातें की हैं इसमें, ये चीज बड़ी देखने वाली जो मेरे लिए बड़ी स्कैंडलस है और भी हमने बात भी की है. मेरे पास लिस्ट है जो ये नेशनल असेंबली की आईटी की कमेटी, जैसे सेनेट की है ना, यहाँ जो है ये चेयरपर्सन है सेनेट, वहां ये बिल गया था. 15-20 मेंबर है इस कमेटी के, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी 3-4 हैं, नवाज लीग के भी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं और पीटीआई के लोग भी हैं. लेकिन पीटीआई वाले ये कह सकते हैं हमने बैकआउट किया, हम नहीं, इसलिए हम इस बैकआउट के खिलाफ हैं कमेटीज के, कि ये इश्यू फिर बैठ के अगर पीटीए वाले नहीं होंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट कितने कंप्रोमाइज हो सकते हैं.
3: ਇਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਉਫ ਕਲਾਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ. ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲੈ ਕੇ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊ.
4: ਐਕਟਿੰਗ